हम तो आ गए हैं और आप लोग भी आ गए हैं, आपकी मेल्स देखकर पता चल रहा है। और ये जो गाना आपने सुना, ये सुना सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना, पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओब्रॉय की फरमाइश पर, आशा जी की प्यारी सी आवाज, ओपी नैयर का म्यूजिक, और फिल्म तो क्या ही कमाल की थी, राज खोसला का निर्देशन। आप ऐसी फिल्में ना एक बार देख लें तो भूल नहीं सकते हैं, और यही कमाल है हमारे चैनल का भी, क्योंकि इस पर ऐसे ही दौर के गाने बजते हैं जिन्हें भूला नहीं जा सकता कभी भी। 50s, 60s, 70s क्या गाने बनते थे। चलिए एक और गाना सुन लेते हैं। और ये जो आवाज है ना, ये भी बहुत ही प्यारी आवाज, इतनी शांत सी आवाज लगती है ना, मुझे तो बहुत ही पसंद है। हेमंदा की आवाज, हेमंत कुमार, उन्हीं की फिल्म है और उन्हीं की फिल्म का गाना है, उन्हीं की आवाज में गगनदीप थांडी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, वामिका वाणी, इन सब की फरमाइश पर 20 साल बाद।

एक और आवाज जो अपने गानों में परफेक्शन के लिए जानी जाती है, मन्ना डे साहब की, उन्हीं का गाना अब मैं आपको सुनवाने वाली हूँ। तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, मेघा मस्कीन, चैतन्य मस्कीन रचित

सीता खुराना केशु रिधान खुराना राहुल खुराना की फरमाइश पर। और ये जो गाना है ना कव्वाली है एक्चुअली, और ये कव्वाली मतलब यादगार है, सदा बहार है, और आवाज तो खैर माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही परफेक्ट मैच्योर वॉइस मन्ना डे साहब की। चलिए सुनते हैं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक

0: सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

स्वादिष्ट लवेक आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये है दिल का मेल बॉक्स। मैं हूं नीतू आपके साथ और अगला गाना भी आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा गाना है। इस गाने की फरमाइश सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गवया मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, इन सभी ने मिलकर भेजी है। फिल्म है जिद्दी और गाना आशा पारिख पर पिक्चराइज्ड है। बहुत प्यारा सा गाना लता मंगेशकर की आवाज में, आइए आनंद उठाते हैं हम सब मिलकर। आप भी अगर अपनी पसंद का कोई गाना सुनना चाहते हैं तो हमें भेज सकते हैं अपनी पसंद FM Gold AIR Delhi @gmail.com पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
0: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नब्बे वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
4: सुनिए एफएम गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
3: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
4: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
3: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ एफएम गोल्ड 100.1 पर।

ये है दिल का मेल बॉक्स, नीतू के साथ सुन रहे हैं आप आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर। बोधराज खोलवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश सुनना चाहते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गाना दो बदन फिल्म से। हालांकि इन दिनों अगर हम दिल्ली में देखें ना तो कहीं भी ठंडी हवा नहीं चल रही है, लेकिन ठीक है, इमेजिन तो कर ही सकते हैं ना। इमेजिन करेंगे तो जरा गर्मी कम लगेगी, लू के थपेड़े महसूस नहीं होंगे। तो गाने को एंजॉय करके इमेजिन करिए आप भी।

यादों का तो ऐसा है, कभी भी आ सकती हैं और कभी भी वो यादें आपको हंसा भी सकती हैं, रुला भी सकती हैं। तो उन यादों का जो सिलसिला है ना, वो एक अलग तरह का है। काम करते हुए उसको जरा दूर रखते हैं, गाने सुनते हैं। और ये आखिरी गाना है इस प्रोग्राम का, आकाश देव फिल्म से सुनना चाहा है फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा ने। और इसी के साथ नीतू आपसे इजाजत चाहती है, आप इस गाने का आनंद उठाइए। मैं तस्वीर में आपसे मिलती हूँ 11:10 पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोग को समाप्त करने के लिए विश्व के सबसे बड़े स्क्रीनिंग और शुरुआती पहचान कार्यक्रम की शुरुआत की है। श्री नड्डा ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के सत्र के दौरान फेफड़ों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग पर मंत्री स्तरीय दृष्टिकोण विषय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विभिन्न राजमार्गों की गुणवत्ता और रखरखाव प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री गडकरी ने संपर्क और यात्रियों की सुविधा के लिए सतत और सक्षम राजमार्ग हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी और समय पर कार्यान्वयन किए जाने पर बल दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि यह निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द करके सभी मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने, धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई रिपोर्टें मिली थी। फलता विधानसभा सीट पर होने वाले पुनर्मतदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमिलनाडु में आज मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व

आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। नीतू है आपके साथ और ये है तस्वीर, जिसमें हम बात करते हैं अपने ही देश की कुछ ऐसी जगहों की जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही प्यारी हैं, और जहां जाने का अगर आपका कहीं घूमने का मन है तो आप वहां जा सकते हैं। अब होता क्या है ना कि अक्सर लोग बातें तो कर लेते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट भी कर लेते हैं रील्स भेज भेज के, लेकिन अक्सर जाना नहीं हो पाता। और होता ये भी है कि आप जब उन जगहों के बारे में देखते हैं, सुनते हैं, तो बड़ा ही आपको लगता है यार इतनी अच्छी अच्छी जगह है हमारे देश में, हम जा ही नहीं पाते हैं। लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कि कम सुने हुए होते हैं। तो आज जिस जगह की बात मैं करने जा रही हूं ना, ये नाम भी आपने शायद बहुत कम सुना होगा। ये है ओडिशा का कश्मीर, यानी इसे ओडिशा का कश्मीर कहा जाता है, और ये ओडिशा के कंधमाल जिले में बसा है दारिंगबाड़ी। ये छोटा सा हिल स्टेशन है, समुद्र तल से करीब 3000 फीट की ऊंचाई पर बसा है। ठंडी हवाओं, धुंध भरे जंगलों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। एक ऐसा ठिकाना जहां कुदरत अपने सबसे कोमल रूप में दिखाई देती है।

नज़ारे तो वाकई देखने लायक होते हैं। आप कहीं बाहर चले जाएं पहाड़ों पर तो बहुत ही एक से बढ़कर एक नज़ारे आपको मिलते हैं। और दारिंगबाड़ी भी ऐसी ही गिनी चुनी जगहों में से है, खासतौर पर ओडिशा की गिनी चुनी जगहों में से है, जहां सर्दियों में तापमान 0 डिग्री के आसपास चला जाता है और कभी कभी तो फ्रॉस्ट भी देखने को मिलता है, यानी पाला पड़ता है वहां पर, जो कि ओडिशा में बहुत ही रेयर है। ओडिशा में पाइन ट्री भी कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन दारिंगबाड़ी में पाइन का खूबसूरत जंगल है जिसे देखते ही वो जो हिल स्टेशन वाली फीलिंग है ना वो आ जाती है। और पहाड़ हो, पहाड़ का गांव हो ना स्पेशली, तो बस ऐसा करता है दिल कि वहां से वापस ही ना आया जाए। कोई बात नहीं, वो मौका भी आएगा जब आप वहां जाएंगे और बसेंगे, लेकिन फिलहाल गाना सुन

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: तस्वीर सुन रहे हैं आप नीतू के साथ आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर और आज हम बातें कर रहे हैं ओडिशा के हिल स्टेशन दारिंगबाड़ी की। आप वहां जाएंगे ना तो बटरफ्लाई पार्क और खूबसूरत नेचर पार्क में घूमने का मौका बिल्कुल मत गंवाइएगा। नेचर के साथ नेचर के बीच में ये वॉक आपको हमेशा याद रहेगी। हिल व्यू पार्क, डोलुरी नदी तो बस ऐसे हैं कि आपको वहीं थाम के रख लेंगे, आपका हिलने का मन नहीं करेगा। और यहाँ के हिल व्यू पॉइंट से आपको दिख सकता है सूर्योदय और बादलों का मंत्रमुग्ध कर देने वाला नजारा। आप जाके तो देखिए, कोशिश ये होती है कि आप जाएंगे तभी आपको ये सब दिखेगा, नहीं जाएंगे तो सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं। या फिर गाने सुन के एंजॉय कीजिए।

आप जब ऐसी जगहों पर घूमने जाते हैं ना, तो सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं, तो सबके एक जैसे एक्सपीरियंसेस नहीं हो सकते। और दारिंगबाड़ी की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत थोड़ा कम जाना पहचाना पहचानी जगह है, तो अगर आप वहां जाते हैं तो फिर अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। दारिंगबाड़ी की बात है तो इसका जो नाम है वो एक ब्रिटिश अधिकारी डेरिंग साहब के नाम पर पड़ा, जिन्होंने इस क्षेत्र को विकसित किया था। दारिंगबाड़ी अपनी ऑर्गेनिक खेती के लिए भी जानी जाती है, खासकर GI टैग वाली कंधमाल हल्दी, जो बेहतरीन क्वालिटी की हल्दी मानी जाती है, और अदरक की पैदावार, उसके लिए भी दारिंगबाड़ी जाना जाता है। दारिंगबाड़ी के आसपास के जंगलों में कुटिया कोंध जनजाति के जो लोग हैं वो रहते हैं, जो भारत के सबसे पुराने आदिवासी समुदायों में से एक हैं। स्थानीय जनजातियां अपनी पारंपरिक संस्कृति और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं, तो जब आप वहां जाएंगे तो उस जगह के हस्तशिल्प से रूबरू होइएगा, अच्छे से जानिएगा करीब से, क्योंकि हर जगह की अपनी एक खासियत होती है, तो उस खासियत को जान लेना बहुत जरूरी है, तभी हम उस जगह को ज्यादा बेहतरीन तरीके से जान पाते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दशमलव एक आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू के साथ ये है तस्वीर, और तस्वीर में आज हमने बातें की दारिंगबाड़ी की, जो कि ओडिशा में है। ओडिशा का हिल स्टेशन है और यहाँ जाने के लिए सबसे अच्छा समय ठंडा मौसम ही होता है हिल स्टेशन जाने के लिए, अक्टूबर से मार्च तक का। और उसमें भी अगर आप फ्रॉस्ट का अनुभव करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं पाला पड़ते हुए वो कैसा लगता है, वो उस जगह पर कैसा महसूस होता है, तो खास तौर पर दिसंबर जनवरी के महीनों में जाइएगा। सर्दियों की सुबह यहां इतनी ठंडी होती है कि घास और पत्तों पर बर्फ जैसी परत जम जाती है। दारिंगबाड़ी का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और नजदीकी रेलवे स्टेशन है ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन। भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और फुलवनी से बस या टैक्सी लेकर आप पहुंच सकते हैं दारिंगबाड़ी।

आने का नहीं, अब तो जाने का समय हो गया है। हाँ, कोई दूसरा आएगा लेकिन मुझे जाना होगा। तो नीतू चलती है, आप सुनते रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, क्योंकि अभी बहुत कुछ है सुनने के लिए। अभी मैं आपके लिए एक और गाना छोड़े जा रही हूँ, शशि कपूर पर पिक्चराइज गाना है और फिल्म है प्यार का मौसम। आप इसका आनंद उठाइए और नीतू को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धनशोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोग को समाप्त करने के लिए विश्व के सबसे बड़े स्क्रीनिंग और शुरुआती पहचान कार्यक्रम की शुरुआत की है। श्री नड्डा ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के सत्र के दौरान फेफड़ों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग पर मंत्री स्तरीय दृष्टिकोण विषय पर आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विभिन्न राजमार्गों की गुणवत्ता और रखरखाव प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री गडकरी ने संपर्क और यात्रियों की सुविधा के लिए सतत और सक्षम राजमार्ग हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी और समय पर कार्यान्वयन किए जाने पर बल दिया। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और एस्थेटिक क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा है कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और

कदमों का उल्लंघन माना जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द करके सभी मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई रिपोर्टें मिली थीं। फलता विधानसभा सीट पर होने वाले पुनर्मतदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में 23 सदस्यों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस के 2 सदस्य भी हैं। नए मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। नए सदस्यों को आज सुबह लोकभवन में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने शपथ दिलाई। अब मंत्रिमंडल में कुल 32 मंत्री हैं। इनमें मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

घर आंगन के शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप हमें सुन रहे हैं FM गोल्ड के 100.1 MHz पर और इंद्रप्रस्थ के चैनल 366.3 मीटर यानी 819 KHz पर। दोस्तों, आपका और हमारा रिश्ता बेहद पुराना है। हमारी यही कोशिश होती है कि हम आपकी पसंद का पूरा ख्याल रखें, जिससे आप जुड़े रहें अपने मन पसंद शो घर आंगन के साथ। आप हमें मेल भेज सकते हैं और हमारा मेल एड्रेस है fmgoldga@gmail.com। हमें आपके विचारों का, सुझावों का इंतजार हमेशा रहता है और हमेशा रहेगा भी। तो खूब ढेर सारी जानकारियों के साथ आपसे आगे जुड़ेंगे, लेकिन

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

जी हाँ, यादें यादें यादें। आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफर की शुरुआत की खूबसूरत ढेर सारी प्यारी प्यारी यादें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इसी की, यानी कि 3 अक्टूबर 1957 को आकाशवाणी ने बॉम्बे यानी मुंबई से देश की सुरीली धड़कन विविध भारतीय सेवा की शुरुआत की। भारतीय श्रोताओं को मनोरंजन और सुगम संगीत का एक स्वदेशी मंच प्रदान करने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया था। उद्घाटन के दिन विविध भारती पर प्रसारित होने वाला पहला गीत मन्ना डे द्वारा गाया गया नाच रे मयूरा था। फिल्म संगीत के साथ साथ हवा महल, संगीत सरिता, भूले बिसरे गीत, जयमाला और छाया गीत जैसे अत्यंत लोकप्रिय कार्यक्रम प्रसारित होते थे। लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन और सुनील दत्त जैसी सिनेमा जगत की महान हस्तियों ने भी अपनी आवाज और उपस्थिति से इस सेवा की गरिमा को बढ़ाया। विविध भारती ने हिंदी फिल्म संगीत के माध्यम से पूरे देश को भाषाई और सांस्कृतिक एकता के सूत्र में पिरोया था। सुनील लता मंगेशकर की आवाज में गीत फिल्म है महबूबा।

0: 90.
1: अब बात करते हैं कुछ संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस की, जिसे आमतौर पर सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस के रूप में जाना जाता है। हर साल 21 मई को मनाया जाने वाला ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी दुनिया की ताकत हमारी विविधता में है। हमारे देश भारत ने तो सांस्कृतिक विविधता की मिसाल खुद मिलती है। अलग अलग भाषा, खान पान, त्यौहार, पहनावे सब मिलकर हमारी पहचान बनाते हैं। सांस्कृतिक विविधता सिर्फ उत्सव नहीं, ये विकास का इंजन है। जब अलग अलग संस्कृतियां एक दूसरे से सीखती हैं तो नई नई विचारधारा जन्म लेती हैं, नए आविष्कार होते हैं और समाज आगे बढ़ता है। इस दिन हमें वादा करना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति को बनाए रखते हुए दूसरी संस्कृतियों का भी सम्मान करेंगे, क्योंकि एक दूसरे का सम्मान करना ही सच्चा विकास है। तो आज से शुरू करते हैं, किसी एक नए दोस्त से बात करें, किसी अलग भाषा का गाना सुने या किसी दूसरे त्योहार में शामिल हों, विविधता को अपनाएं और विकास को आगे, हमेशा आगे बढ़ाते ही जाएं।

और अब बात करते हैं राजीव गांधी की पुण्यतिथि की। आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर हम उन युवा प्रधानमंत्री को याद करते हैं जिन्होंने भारत की आधुनिक बनाने का सपना देखा था। मात्र 40 साल की उम्र में देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी ने कंप्यूटर और टेलीकॉम क्रांति की नींव रखी, जवाहर नवोदय विद्यालय शुरू किए और शिक्षा विज्ञान को नई दिशा भी दी। वे कहते थे, भारत एक पुराना देश है लेकिन युवा राष्ट्र है और मैं भी युवा हूँ। मेरा सपना एक मजबूत आत्मनिर्भर भारत का है। और इन दूरदर्शी नेता को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। उनकी याद हमें प्रेरित करती रहे कि हम मिलकर एक बेहतर भारत बनाएं। और साथ ही आतंकवाद विरोधी दिवस हर साल 21 मई को मनाया जाता है क्योंकि ये दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर ही आता है। इस दिन हम संकल्प लेते हैं कि भारत की अहिंसा की परंपरा को मजबूत रखेंगे और मानवता के लिए काम करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर एक सुरक्षित शांतिपूर्ण भारत बनाने का वादा करें।

अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में गीत, फिल्म थी आनंद। अब बात करते हैं कुछ विश्व चाय दिवस की। आज हम बात करें एक ऐसे पेय की जिसके बिना सुबह की शुरुआत अधूरी लगती है, और वो है हमारी प्यारी चाय। चाय सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का हिस्सा है। पानी के बाद दुनिया का सबसे ज्यादा पिया जाने वाला ये पेय है चाय। सुबह उठते ही चाय, काम के बीच में चाय, दोस्तों के साथ चाय, ठंड में चाय, बारिश में चाय, हर मौके का साथी है चाय। ये सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि लाखों किसानों की रोजी रोटी भी है। भारत चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी की चाय तो पूरी दुनिया में मशहूर है। आज का दिन उन चाय उत्पादकों के नाम है जिनकी मेहनत से ये प्याला हमारे हाथ में आता है। चाय हमें एनर्जी देती है, स्वास्थ्य लाभ देती है और सबसे बढ़िया दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे मारने का भी बहाना देती है। तो चाय हमें एक दूसरे से जोड़ती भी है। कितने ही रिश्ते चाय की दो प्यालों के साथ शुरू हुए हैं। ऑफिस में, ट्रेन में, घर में, हर जगह चाय से बातचीत शुरू होती है। और आज चाय दिवस पर अपनी फेवरेट चाय बनाकर पीजिए, पिलाइए किसी को और खुश हो जाइए। क्योंकि जैसा कहा जाता है ना, हमेशा हर कोई बोलता है चाय पी लो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुनिए सौतन फिल्म से गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: और अब बात करते हैं कुछ स्टैंड अप इंडिया योजना महिलाओं के लिए। नए रूप में प्रस्तुत ये योजना महिलाओं को बेहतर वित्त पोषण, मजबूत समर्थन, सपनों को सफल व्यवसायों में बदलने के बड़े अवसर प्रदान करने को तैयार है। ये सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि सशक्त महिलाओं के नेतृत्व में एक मजबूत आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक कदम है। स्टैंड अप इंडिया योजना महिला उद्यमियों के लिए नया व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक बैंक लोन प्रदान करती है और योजना प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक महिला को ऋण देने का लक्ष्य रखती है।

भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। और खास तौर पे इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वह महिला उद्यमी होनी चाहिए। व्यक्तिगत उद्यमों के लिए कम से कम 51% शेयरधारिता और नियंत्रक हिस्सेदारी एक महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए। ब्याज दर बैंक के सबसे कम दर के बराबर होती है, जो आमतौर पर 3% से अधिक नहीं होती। और ये ऋण 7 वर्ष तक की अवधि में चुकाया जा सकता है, जिससे 18 महीने की अधिकतम मोहलत अवधि शामिल हो सकती है। और इसके लिए खास तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड बहुत जरूरी है, निवास प्रमाण पत्र और व्यवसाय का पता होना चाहिए, व्यवसाय योजना का नाम होना चाहिए, और ये योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए और उनके काम को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।

और अब बात करते हैं पर्यावरण के अनुकूल ही खुद को चलाएं, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल होने और धरती की रक्षा करने से ना सिर्फ ये ग्रह रहने के लिए एक बेहतर स्थान बनता है बल्कि जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार आता है। जैसे गर्मियों में घर को ठंडा और ताज़ा रखने के लिए आसपास आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं अपने घर में, और हरियाली से भरा रहेगा आपका ये घर और ऑक्सीजन भी मिलती रहेगी। पूरे हफ्ते कम से कम प्लांट बेस्ड पदार्थों को चुनें जिसमें बहुत सारी सब्जियां, फल, फलियां और अनाज शामिल हों, जिससे जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद मिलेगी। आप अपनी बैटरी, कागज, कंटेनर, कपड़े और कठोर प्लास्टिक उत्पादों को रिसाइकलिंग कर सकते हैं इससे पहले कि आप कुछ भी फेंक दें, उसे रिसाइकिल कर लें। आजकल पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन है यानी प्लास्टिक, और सिंगल जो प्लास्टिक है वो बैन करने के बाद भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि गलत है, और इसका इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर दें। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करें, ज्यादा साइकिल का इस्तेमाल करें। अगर हर कोई खुद से ऐसे कदम बढ़ाए जिससे प्रकृति को नुकसान ना पहुंचे, ताकि स्वच्छ और खुली हवा में सांस ली जा सके। लता मंगेशकर, सुरेश फड़े की आवाज में गीत।

और अब बात करते हैं घर से निकलते हुए यानी गर्मी के मौसम में बाहर निकलने से पहले सावधानियां बहुत जरूरी हैं, क्योंकि गर्मी के चलते अस्पतालों में ओपीडी में डिहाइड्रेशन, उल्टी, सिरदर्द मरीजों की तादाद बढ़ गई है और डॉक्टर ने सड़कों पर काम करने वाले मजदूरों, बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, शुगर बीपी के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। सर्द गर्म शिकार हो रहे डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि खासतौर पर रात को तापमान बढ़ने से लोगों की नींद प्रभावित हो रही है, जिससे सुबह थकान और कमजोरी की शिकायतें आ रही हैं। इसके अलावा तेज धूप में एसी वाले कमरों में आने जाने के कारण भी लोगों की सेहत बिगड़ रही है और ये भी कहा जा रहा है कि अक्सर एसी को 16-18 डिग्री पर चलाते हैं लोग, जिससे शरीर का तापमान संतुलन बिगड़ जाता है। तो एसी का तापमान हमेशा 24 से 27 डिग्री के बीच रखना जरूरी है। ठंडे कमरे से अचानक गर्मी में निकलने से सांस के पुराने मरीजों की समस्या बढ़ रही है। दोपहर 11 बजे से 3 बजे के बीच धूप में निकलने से बचें और बच्चे इस दौरान बाहर न खेलें, नियमित अंतराल पर पानी पीते रहें, ORS और नींबू पानी, नारियल पानी का सेवन ज्यादा करें और बाहर पानी जो रेड़ी पर मिलता है उससे पानी पीने से बचें। यदि अगर बहुत जरूरी बाहर जाना है तो खासतौर पर छाते और पानी की बोतल साथ लेकर जाएं, साथ ही अपने डॉक्टर की सलाह से दवा की डोज भी जरूर रख लें। लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म है हरे रामा हरे कृष्णा।

और अब हम यही कहना चाहते हैं कि हमें यूं ही सुनते रहिए घर आंगन के शो में, और इसी वादे के साथ कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपसे होगी अगली मुलाकात। अगली प्रस्तुति तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत, यानी सिमरन कौर को दीजिए अनुमति। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कोन ओह यूल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
1: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सेक्रीफाइस का सिंबल है। यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया में नंबर एक बनाना है। नई दिल्ली में भारत में अमरीकी वाणिज्य मंडल के वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश का ऑटोमोबाइल उद्योग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है, जिसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अमरीका 79 लाख करोड़ के साथ पहले स्थान पर, जबकि चीन 49 लाख करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोधन और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम में श्री नड्डा ने ये बात कही। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मैं प्रियांशी भटनागर लेकर उपस्थित हूँ आपका पसंदीदा और मनोरंजक कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल। श्रोताओं, आज 21 मई को हम हिंदी सिनेमा के महान स्वप्न दृष्टा और निर्देशक सुबोध मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं। 1921 में झांसी में जन्मे सुबोध मुखर्जी ने वकालत की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और कारावास की तपस्या भी काटी। राष्ट्र सेवा से उपजी इसी स्वतंत्र चेतना के साथ जब वे सिनेमा में आए तो उन्होंने पर्दे पर भी नायक को पुरानी रूढ़ियों से आजाद कर दिया। आइए उनके इस जादुई सफर की शुरुआत करते हैं बतौर निर्देशित उनकी पहली ही सफल फिल्म मुनीम जी के इस अमर और सदाबहार गीत से।

स्वाधीनता के बाद मुंबई आकर सुबोध मुखर्जी ने सीधे निर्देशन के बजाय अपने भाई शशधर मुखर्जी के प्रसिद्ध फिल्मस्तान स्टूडियोज में आधे दशक तक पटकथा लिखने और संपादन की बारीकियां सीखी। महान निर्देशक ज्ञान मुखर्जी के सहायक के रूप में काम करते हुए उन्होंने साल 1950 में फिल्म सरगम और 1954 में कस्तूरी की पटकथा लिखी, जिसने उन्हें दृश्यों के गणित का उस्ताद बना दिया। आइए उनकी इसी लेखनी और देवानंद की बेपरवाह शैली के सुंदर संगम को सुनते हैं साल 1957 की कल्ट क्लासिक फिल्म पेइंग गेस्ट के इस सदाबहार गीत में।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं प्रियांशी भटनागर और कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल में आज हम प्रतिष्ठित लेखक, निर्माता और निर्देशक सुबोध मुखर्जी की सिनेमा यात्रा को याद कर रहे हैं। विराम के बाद आइए बात करते हैं सुबोध बाबू की सबसे बड़ी विशेषता की, किरदारों के भेषांतर यानी मैस्करेड के मनोविज्ञान की। वे किरदारों के इस छद्म रूप और लुका छिपी से कहानियां बुनने के माहिर थे और इसका बेहतरीन उदाहरण उनकी पहली ही फिल्म मुनीम जी में मिलता है, जहां देवानंद एक मुनीम के भेष में अपनी वास्तविकता छुपाते हैं। और यही रंग फिल्म पेइंग गेस्ट में भी दिखता है, जहां वे स्वयं अपने ही एक बुजुर्ग अवतार मिर्जा

रूप धरकर पर्दे पर स्वांग रचते हैं। संवादों की यही चुस्ती और शहरी रोमांस का ये शालीन सलीका उनकी पहचान बना, जिसे आज भी मजरूह सुल्तानपुरी के शब्दों में उतनी ही ताजगी के साथ महसूस किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप आइए सुनते हैं

श्रोताओं, 50 के दशक के उत्तरार्ध में सुबोध मुखर्जी की फिल्मों की एक और बड़ी तकनीकी खूबी उभर कर सामने आई, दृश्यों का तेज वेग और अनुशासित रफ्तार, जिसका सीधा संबंध टेनिस खेल के प्रति उनके आजीवन अनुराग से था। वे अपने छात्र जीवन से ही टेनिस के एक बेहद कुशल खिलाड़ी थे और उनका मानना था कि फिल्म की पटकथा में भी

तभी फुर्ती होनी चाहिए जो टेनिस कोर्ट पर एक मंजे हुए खिलाड़ी के शॉट्स में होती है। इसी खेल भावना और गतिशीलता को उन्होंने साल 1959 की अपनी संगीतमय ब्लॉकबस्टर लव मैरिज में पिरोया, जहां शंकर जयकिशन की जादुई जोड़ी ने भी सुर मिलाए। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में सुनते हैं ये मधुर गीत

मुखर्जी ईस्टमैन कलर टेक्निक में जंगली फिल्म लेकर आए, जिसने हिंदी सिनेमा को उस दौर के गंभीर और उदास मिजाज वाले किरदारों से बाहर निकाला और पर्दे पर जिंदा दिली तथा बेफिक्री के एक नए रंगीन युग की शुरुआत की। उन्होंने शम्मी कपूर के रूप में एक ऐसे ऊर्जावान रेबेल हीरो का आविष्कार किया, जिसकी शैली ने आगे चलकर नासिर हुसैन और मनमोहन देसाई की ब्लॉकबस्टर मसाला फिल्मों की मजबूत नींव रखी। आइए सुनते हैं शैलेंद्र का लिखा वो क्रांतिकारी गीत, जिसने शम्मी कपूर को याहू स्टार के रूप में हमेशा के लिए अमर कर दिया। आप हैं तैयार?

60 के दशक के उत्तरार्ध में उन्होंने सुबोध मुखर्जी प्रोडक्शंस की स्थापना की और प्रमाणित किया कि वे केवल एक बेहतरीन निर्देशक ही नहीं बल्कि एक पारखी निर्माता और कुशल लेखक भी हैं। साल 1967 की ब्लॉकबस्टर कॉमेडी शागिर्द की पूरी मूल कहानी और चुस्त पट कथा स्वयं सुबोध बाबू ने ही लिखी थी, जिसके जरिए उन्होंने अपने भतीजे जॉय मुखर्जी को एक अनूठे कॉमिक अंदाज में पेश किया। 70 के दशक में कदम रखते ही उन्होंने निर्माता के रूप में बदलते समय के नए हुनर को पहचाना और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ मिलकर 1970 में आई फिल्म अभिनेत्री में संगीत के नए

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

सुबोध मुखर्जी के सिनेमाई योगदान और उनकी फिल्मों के लोकप्रिय गीतों को। श्रोताओं, सुबोध बाबू की फिल्मों में जहां एक तरफ याहू का शोर था, वहीं दूसरी तरफ शास्त्रीय रागों की शुचिता के प्रति गहरा सम्मान भी था। जैसे उनके बैनर तले बनी फिल्म शर्मिली का गीत मेघा छाए आधी रात, ये शुद्ध राग पटदीप पर आधारित था। वे सिनेमा के उस महान राजवंश के स्तंभ हैं जिसकी कलात्मक विरासत उनके भतीजे जॉय मुखर्जी से होती हुई आज काजोल और रानी मुखर्जी जैसी प्रतिभाओं के रूप में स्क्रीन को रोशन कर रही है। तो वहीं ये जवानी है दीवानी और ब्रह्मास्त्र जैसी आधुनिक फिल्में बनाने वाले निर्देशक अयान मुखर्जी उनके पर भतीजे हैं। आइए इसी बैनर की फिल्म शर्मिली से सुनते हैं सचिन देव बर्मन के संगीत में डूबा किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया ये रुमानी युगल गीत।

नमस्कार श्रोताओं, विज्ञापन के बाद आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियांशी भटनागर और कार्यक्रम चल रहा है कलाकार बेमिसाल। आज हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के प्रतिष्ठित निर्देशक

मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 मई महीने की 21 तारीख है और दिन है गुरुवार। आकाशवाणी के तवांग केंद्र से आज का हमारा प्रसारण अब आरंभ होता है। अब से लेकर रात के 9:16 तक प्रसारित किए जाने वाले तमाम कार्यक्रमों को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्री तेंजिन दोजी, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री तानिम ताको, ट्रांसमीटर में उपस्थित अभियंत्र के सहायक श्री एके दास और श्रीमती शिखा देखा, मनपा उद्घोषक है श्री लोपसांग तोपदेन और मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका सांगे थामू। आकाशवाणी सुन रहे आप सभी श्रोताओं का आज के हमारे इस प्रसारण में हार्दिक स्वागत है।

0: Chief Minister C. Joseph Vijay-led cabinet in Tamil Nadu expanded to 32, including 4 women ministers. And in IPL cricket, Gujarat Titans to take on Chennai Super Kings in Ahmedabad this evening. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन हुयुल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
3: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत

0: देश पर्वत नैनी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
1: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले तीन महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है।
2: टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
3: इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड।
4: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
3: इट्स लीडरशिप इन जेनेरिक मेडिसिन।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केन्द्रों और माध्यमिक शिक्षा पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
4: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को

0: मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोक भवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, VCK, CPI, CPM, IUML और AIADMK के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले AIADMK ने आज लोक भवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थायी अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंकतालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
2: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं। चाय,
3: ये चाय। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत की हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जनकल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्णय।

0: देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित, अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोताओं, आप पेश है हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। इसमें आज आप सुनेंगे पंडित जसराज से चंद हिंदी देवगीत। तो पेश है कार्यक्रम वंदना।

श्रोता अभी आप सुन रहे थे पंडित जसराज से चंद कृष्ण भजन। इसी के साथ ही कार्यक्रम वंदना यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बजे हैं। श्रोताओं अब पेश है विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। इसमें आज आप सुनेंगे मार्तो कमदक से चंद गालो आधुनिक गीत। तो पेश है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

0: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे मारतो कमतक से चंद गालो आधुनिक गीत। इसी के साथ ही कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। श्रोताओं अब पेश है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम महिला मंच। इसमें आज आप सुनेंगे वन स्टॉप सेंटर तवांग के केस वर्कर एडवोकेट सुनाम सांगू से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 और सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्कप्लेस विषय पर हुई एक भेंटवार्ता। इनसे भेंट करता है दोजी ड्रिमा।
1: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी तवांग से प्रसारित हमारे साप्ताहिक महिलाओं के लिए कार्यक्रम महिला मंच में आप सभी श्रोताओं का मैं स्वागत करती हूं। श्रोताओं आज हमारे साथ आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में उपस्थित है वन स्टॉप सेंटर तवांग के केस वर्कर एडवोकेट सुनम सांगू जी। तो सुनम जी आपका सबसे पहले हमारे आज के इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करती हूँ।
2: आपको भी नमस्कार
1: जी। तो श्रोताओं जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारे साथ आज के विशेष मेहमान है एडवोकेट सुनम सांगू, तो जाहिर सी बात है कि आज हम अधिनियमों पर ही चर्चा करेंगे और कार्यक्रम का नाम ही कार्यक्रम महिला मंच है, तो इसमें हम महिलाएं एवं बच्चों से जुड़े हुए कई सारे अधिनियमों पर बात करेंगे। तो सनम जी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम आज के इस कार्यक्रम में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 या घरेलू हिंसा, आप हमें बताइए कि घरेलू हिंसा किसे कहते हैं और घरेलू हिंसा कितने तरह के होते हैं।
2: जी शुक्रिया। घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस हम उसे कहते हैं जो हिंसा घर के चार दीवारों के अंदर होता है ना। एक छत के नीचे में जितने भी आदमी रहते हैं, जैसे कि एक महिला एक दूसरे घर में शादी करके जाते हैं तो उसका पति का परिवार हो गया, या फिर वो अपने घर में जो अपने माँ बाप भाई बहन या फिर ज्वाइंट फैमिली है तो अंकल आंटी जिसके साथ भी रहते हैं, तो मतलब एक घर के अंदर में जो हिंसा होता है उसे हम डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं या घरेलू हिंसा कहते हैं। और घरेलू हिंसा के हमारे मतलब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर में 5 टाइप्स दिया गया है, 5 टाइप्स। तो पहला है फिजिकल एब्यूज, दूसरा है इमोशनल एब्यूज, तीसरा है सोशल एब्यूज, चौथा है सेक्सुअल एब्यूज और लास्ट इकोनॉमिक एब्यूज। तो मैं इसको थोड़ा आपको ब्रीफ में बताना चाहूंगी। फिजिकल एब्यूज हम किसे कहते हैं, जैसे नाम से हम लोगों को पता चल रहा है कि मतलब फिजिकल मतलब आपको मारना पीटना, उसको हम फिजिकल एब्यूज कहते हैं और वो दिखाई भी देता है अगर किसी के साथ फिजिकल एब्यूज हुआ है तो। मगर जब हम इमोशनल एब्यूज की बात करते हैं तो वो किसी को दिखाई नहीं देता है, अंदर ही अंदर विक्टिम को खाया जाता है ना, तो वो दूसरे टाइप होता है। फिर आता है आपका सोशल एब्यूज। सोशल एब्यूज मतलब मेनलैंड इंडिया में कई कई जगह पर जो बहुत ही अंदर रिमोट एरिया है वहां पर अभी तक भी ऐसे औरतें हैं जिसको घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता है और किसी से मिलने नहीं दिया जाता है, तो वो सोशल एब्यूज के अंदर आता है। उसके बाद आता है आपका सेक्सुअल एब्यूज ना। तो हमारे इंडिया में मैरिटल रेप को अभी तक क्राइम नहीं माना जाता है, तो अगर कोई हस्बैंड कोई किसी वाइफ को मैरिटल रेप करता है तो हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर में उसको सेक्सुअल एब्यूज के अंदर में बुक कर सकते हैं। लास्ट आता है आपका इकोनॉमिक एब्यूज। इकोनॉमिक एब्यूज मतलब जिसे मैंने आपको कहा मेनलैंड इंडिया में कई सारी जगह है जहाँ पर अभी तक औरतों को अपना बैंक अकाउंट भी खोलने नहीं दिया गया है, तो इस तरह का मतलब सिचुएशंस है और उनको खर्चा पानी नहीं दिया जाता है, तो ये सब इकोनॉमिक एब्यूज के अंदर में आता है।
1: तो डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा में केवल शारीरिक हिंसा ही नहीं आते हैं बल्कि और भी बहुत सारे हिंसाएं आते हैं, जैसे यौन हिंसा, भावनात्मक हिंसा या आर्थिक हिंसा या कई तरह के और भी हिंसाएं हो सकते हैं। तो अगर किसी के साथ अगर ऐसी घटना या ऐसी हिंसा होते हैं कहाँ जाकर शिकायत दर्ज करनी चाहिए?
2: जी हमारे अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में अगर किसी के साथ भी इस टाइप के डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो वो अपने अपने जो पास के पुलिस स्टेशन है वहाँ जाके अपना कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, या फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट में वन स्टॉप सेंटर तवांग है वहाँ जाके वो डायरेक्टली आके अपना कंप्लेन कर सकते हैं। और जब वो कंप्लेन करते हैं तो हम जब वो वन स्टॉप सेंटर में आते हैं तो फर्स्ट हम उनका डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं, अकॉर्डिंगली उसके बाद में हम उनको जेएमएफसी कोर्ट में ट्रांसफर कर देते हैं, वहाँ जाके डीएलएसए की मदद से उनको आगे की कार्रवाइयाँ किया जाता है।
1: क्योंकि हमारे समाज में लगभग

0: शारीरिक रूप से जो हिंसा हुआ है उसी को ही सच माना जाता है, लेकिन अब सरकार ने हमें सुविधाएं दे रखी हैं कि किसी भी तरह के हिंसा आपके साथ अगर होते हैं तो आप आकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो अगर किसी महिला के साथ ऐसी ही घटना घटती है, अगर वो आकर आपके पास शिकायत दर्ज भी करते हैं तो सरकार की ओर से और उस पीड़ित महिला को क्या क्या रिलीफ मिलते हैं?
1: जी, जैसे मैंने आपको बताया, जब हम अपने DIR को फॉरवर्ड करते हैं JMFC कोर्ट में, तो वहाँ पर जो भी जो लीगल एड क्लिनिक में एडवोकेट है वो उनको मदद करते हैं। तो उसके बाद में अकॉर्डिंगली, मतलब उनका जो कितना सीवियर उनके साथ में वायलेंस हुआ है उसके अकॉर्डिंग में उनको रिलीफ दिया जाता है। तो फर्स्ट आपको रिलीफ में आता है प्रोटेक्शन ऑर्डर, जिसमें जो औरतें होते हैं, विक्टिम होते हैं, उनके जो एक्यूज होते हैं या रिस्पोंडेंट होते हैं उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन ऑर्डर पास किया जाता है। तो वहां पर उनको वो फिजिकल वायलेंस या किसी भी तरह का जो फिजिकल वायलेंस या इकोनॉमिक वायलेंस जो भी, उसको रोक दिया जाता है। फिर सेकेंड आता है आपका रेसिडेंस ऑर्डर। रेसिडेंस ऑर्डर में क्या होता है, आपका एक महिला को जब वो घर से निकाल दिया जाता है, उसका हस्बैंड या किसी भी
0: कोई भी सदस्य
1: घर के सदस्य के द्वारा, तो वो रेसिडेंस ऑर्डर की मांग कर सकता है। फिर आता है आपका मॉनिटर रिलीफ। वहाँ पर अगर उनके साथ में मतलब मंथली मेंटेनेंस नहीं देता है या फिर इकोनॉमिक वायलेंस हो रहा है तो मेंटेनेंस के लिए वो प्रे कर सकती है। फिर कस्टडी ऑर्डर तो मेनली बच्चों के लिए होता है। अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ या कोई भी जैसे किसी भी महिला के बच्चों को लेने के लिए करता है तो वो कस्टडी ऑर्डर के लिए मांग कर सकता है। और लास्ट है आपका कंपनसेशन ऑर्डर। तो इस एक्ट के अंदर में पीड़ित महिलाओं को कंपनसेशन भी दिया जाता है, जो कि होता है फिजिकल वायलेंस या इमोशनल वायलेंस के लिए दिया जाता है।
0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट, या हम जिसे पोश एक्ट 2013 भी कहते हैं, तो इसके बारे में मैं और हमारे श्रोताएं जानना चाहेंगे कि पोश एक्ट किसे कहते हैं, इसके अंदर क्या जो ऑफिस में काम करते हैं वही महिलाएं आते हैं, या फिर घर में जो काम करते हैं, या घर में काम ही नहीं बल्कि किसी के घर में रहते भी है कोई, जब कोई शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहर में आते हैं तो उनके घर गांव में होते हैं, तो किसी रिश्तेदार के घर पर अगर वो रहते हैं तो उनके साथ भी अगर कुछ ऐसा जो हैरेसमेंट होते हैं तो क्या उन पर भी ये लागू होते हैं?
1: जी, शुक्रिया। फर्स्ट में पोश एक्ट का फुल फॉर्म आपको बताना चाहूंगी, POSH, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। तो यहाँ पर भले ही वर्क प्लेस सिर्फ लिखा है, ये एक्ट जो है, जैसे आपने मुझे पूछा डोमेस्टिक हेल्प के लिए लागू होता है कि नहीं, बिल्कुल ये एक्ट जो है डोमेस्टिक हेल्प के लिए लागू होता है। और जो बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, या फिर कोई भी व्यक्ति जो प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं या किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं, उनके लिए ये लागू होता है।
0: जैसे कि किसी के साथ ऐसी हिंसा या कोई हैरेसमेंट होते हैं तो अगर वो किसी को शिकायत दर्ज करना चाहे भी तो थोड़ी सी खुलकर नहीं बोल सकते हैं, तो अगर शिकायत दर्ज करना चाहे तो किस तरह से करेंगे?
1: तो इस एक्ट के अंदर में ये भी कहा गया है कि किसी भी ऑफिसेस ना, किसी ऑफिसेस या फिर वर्क प्लेस में जहाँ पर 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हो तो वहाँ पर मैंडेटरी है कि एक इंटरनल कंप्लेंट कमिटी बनाना है। तो उस कमिटी में आपका चार मेंबर होना है और उस चार में से मैक्सिमम नंबर जो है, मतलब 50% से ज्यादा मेंबर जो होना है विमेन होना है, जो विमेन रिलेटेड वर्क करता है, जो एनजीओस में है उनको वहां पर अपॉइंट करना है। और जो जो इंटरनल कमिटी में है, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी में है, उनका नाम अपने अपने ऑफिस के नोटिस बोर्ड में उनको डिस्प्ले करना है, ताकि जो एम्प्लॉयज है उनको ये नॉलेज हो कि अगर उनके साथ में अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट हो तो वो किसके पास जाके कंप्लेंट करना है। सेक्सुअल हैरेसमेंट जो ऑफिस में होता है तो उनका उनका जो कंप्लेंट है फर्स्ट आपको IC मतलब इंटरनल कमिटी में जाके लॉन्च करना पड़ता है। फर्स्ट ये इंटरनल कंप्लेंट कमिटी हुआ करता था, लेकिन आफ्टर अमेंडमेंट इन 2016 इसको सिर्फ इंटरनल कमिटी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये कमिटी जो है सिर्फ कंप्लेंट तक ही सीमित नहीं है, इनका पावर इससे ज्यादा है, इसलिए अभी इनको हम इंटरनल कमिटी के नाम से जानते हैं। और अगर 10 से कम वाले जो ऑफिसेस है वो अगर कंप्लेंट करना चाहते हैं तो हर डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक वाइज में आपका लोकल कमिटी होता है हर डिस्ट्रिक्ट में, तो उनको अप्रोच करके वो अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं।
0: जी जी सुनम जी, क्योंकि मैं हर बार ये कहती हूँ कि हम बहुत ही खुशनसीब लोग हैं, हमारे यहाँ पर ऐसी चीजें बहुत ही कम ना के बराबर होते हैं, फिर भी इन सब चीजों के बारे में जानकारी होना हमारे कर्तव्य है और हर ऑफिस में, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, वहाँ पर एक

0: इंटरनल कमिटी होना बहुत ही जरूरी है ना, क्योंकि किसी भी महिला के साथ अगर ऐसी हिंसा होते हैं, हैरेसमेंट होते हैं, तो वो सीधे जाकर अपनी शिकायत कर सके। और मैंने ये भी सुना कि शी बुक्स पोर्टल नामक एक वेबसाइट है, तो इस बारे में आप हमें बताएं।
1: आजकल ऐसा होता है कि लोग कंप्लेन करने से, बाहर आने से उनको शाई फील होता है, घबराहट फील होता है, तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक पोर्टल लॉन्च किया है ना, एक पोर्टल लॉन्च किया है, तो वहां में जो पीड़ित महिलाएं है जो सेक्सुअल हैरेसमेंट से रहे अपने ऑफिस में, वो डायरेक्टली ऑनलाइन भी कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। shebox.wcd.gov.in यहाँ पर जाके वो डायरेक्टली अपना कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। तो इसके अंदर से जो भी उनका कंसर्न ICC है या LC है, लोकल कमेटी है या इंटरनल कमेटी है, वो अपने कंप्लेन को टिकअप कर लेंगे।
0: जी जी, मतलब अगर किसी के साथ ऐसी हैरेसमेंट होते हैं तो वो बिना किसी दूसरों को बताए ही अपने लैपटॉप से या अपने ही कंप्यूटर से वो इस पोर्टल को टाइप करते हुए अपनी शिकायत ऑनलाइन भी दर्ज कर सकते हैं ना। और सुनम जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट किसे कहते हैं और यह अधिनियम कितनी उम्र तक के बच्चों

0: इंटरनल कमेटी है वो अपने कम्प्लेन को टिकअप कर लेंगे।
1: जी जी, मतलब अगर किसी के साथ ऐसी हैरेसमेंट होते हैं तो वो बिना किसी दूसरों को बताए ही अपने लैपटॉप से या अपने ही कंप्यूटर से वो इस पोर्टल को टाइप करते हुए अपनी शिकायत ऑनलाइन भी दर्ज कर सकते हैं ना। और सुनील जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट किसे कहते हैं और यह अधिनियम कितनी उम्र तक के बच्चों के लिए लागू होते हैं?
0: जी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है वो है बच्चों के लिए, ये एक एक्ट है जो 18 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनके लिए ये एक्ट बनाया गया है। आपने निर्भया केस तो जरूर सुना होगा, जो घटना हुआ था निर्भया केस, तो उसमें आपको जानकारी होगा कि वहाँ पे एक एक्यूज जो है वो जुवेनाइल था, जिसके होते उस सीवियर पनिशमेंट इतना नहीं मिला था, जिसके वजह से भी इस एक्ट को थोड़ा सा अमेंडमेंट करना पड़ा। तो उस केस के बाद से अब जो बच्चे हैं, जो 16 टू 18 इयर्स के बच्चे हैं, अगर वो हीनेस क्राइम करता है, हीनेस क्राइम मतलब जो 7 इयर्स से ज्यादा पनिशमेंट होता है जिसमें, अगर वो ऐसा क्राइम करता है तो उनको भी एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो जैसे आपने हमको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में पूछा है, तो नॉर्मली ये बच्चों के लिए ही है, बच्चों के लिए है। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर में दो तरह का बच्चा आता है, एक है आपका CNCP और दूसरा है CCL। CNCP मतलब चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, एंड CCL मतलब चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ।
1: तो चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ या फिर चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, इन दोनों में फर्क क्या है? और अगर किसी बच्चे से अपराध हो जाते हैं तो उन पर कार्रवाई कौन करेंगे?
0: CNCP जैसे कि चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, और CCL मतलब चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ, मतलब जो 18 से नीचे बच्चे हैं वो अगर कोई क्राइम करता है तो उनको कहाँ पर, हम नॉर्मल कोर्ट में तो उनको हम लेकर नहीं जाएंगे, तो उनको हम लोग डील करते हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जो इस एक्ट के अंदर में ही दिया गया है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है वो चाइल्ड फ्रेंडली होता है, नॉर्मल कोर्ट की तरह नहीं होता है। तो उसमें 3 मेंबर होता है, एक होता है प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट, जो हमेशा अब वो डिस्ट्रिक्ट जो हमारा JMFC मैम होता है यहाँ का, या सर होता है, वही प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट होता है। फिर जो 2 बाकी मेंबर है वो किसी भी NGO का मेंबर हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है, या फिर सोशल वर्कर हो सकता है। तो अगर कोई बच्चा क्राइम करता है तो उनको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर में देखा जाता है। चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन जो बच्चे होते हैं उनको जो है केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत होते हैं, जो डेस्टिट्यूट होते हैं, जिसका माँ बाप ने उसको अबेंडन कर दिया होते हुए भी, ऐसे तरह के बच्चे ना, तो उनको इसी एक्ट के अंदर में CWC ना, जैसे GGB दिया है, CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी करके होता है, जहाँ पर एक चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर होते हैं, वो लोग उनको देखभाल करते हैं। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका माँ बाप होते हुए भी उसको नहीं देख रहा है, नहीं देख पा रहा है, या फिर कोई बच्चा का कुछ आता पता नहीं है ना, और जो कोई बहुत ही पुअर फैमिली से या फिर ऐसे बिलोंग करता है, तो उनको CWC टेक केयर करते हैं।
1: जी, और जब हम बच्चों से संबंधित चर्चा कर ही रहे हैं तो मैं साथ में ये भी जानूंगी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 या शिक्षा का अधिकार भी कहते हैं, तो इसके बारे में हमें बताइए आप।
0: जी, राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसमें क्या होता है, आपका जो 6 to 14 इयर्स का बच्चा होता है उसको कंपलसरी और फ्री एजुकेशन देने का बात करता है ये एक्ट। किसी भी स्कूल में अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसको हम एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते, और किसी भी स्कूल, गवर्नमेंट रन स्कूल है, वहाँ पर बच्चों को हम फीस नहीं ले सकते, किसी भी तरह का चार्ज नहीं ले सकता है, क्योंकि ये एक्ट कहता है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होना है। और जो प्राइवेट स्कूल चलाते हैं उनके लिए भी ये होता है इस एक्ट के अंदर में कि उनका जो 25% होता है, 24% जो होता है वो
1: छूट मिलेंगे।
0: जी, मतलब बैकवर्ड क्लासेस जो बच्चे हैं उनके लिए मतलब रिजर्व होना चाहिए। तो मेनली ये एक्ट यही कहता है कि जो 6 to 14 ईयर से उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना ही है, भले ही अगर वो अपने एज से ज्यादा, किसी किसी का ऐसा होता है कि वो एज चला जाता है फिर वो उस क्लास में फिट नहीं होता है, तो वो उस कंसर्न स्कूल का ड्यूटी होता है कि उसको स्कूल में भर्ती कराना है, चाइल्ड स्पेशल नीड की तरह उनको ट्रीट करके उनको पढ़ाना है, उनके दूसरे जो बच्चे होते हैं उसके साथ में बराबर उनको लाना उनका ड्यूटी होता है।
1: जैसे कि अभी बाल मजदूर हमारे यहाँ पर तो बहुत ही कम होते हैं, आजकल हर कोई समझदार हो चुके हैं कि सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बाहर से लाकर भी किसी के होटलों में या घरों में काम कराते हैं, हालांकि उनके माँ पिताजी की रजामंदी के साथ ही कराते हैं, फिर भी ऐसे बच्चे अगर 6 से 14 साल के बीच के निकले तो उन पर क्या ये कानून लागू है या नहीं?
0: जी, ये जो है 6 to 14 ईयर

0: जो है वो सभी बच्चों के लिए, इंडिया के सभी बच्चों के लिए उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देना है। और अगर कोई व्यक्ति 6 या 14 वर्ष के बच्चों को काम पर रखता है तो वो चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर उसको बुक किया जाएगा, क्योंकि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अगर कोई काम लगाता है तो वो चाइल्ड लेबर के अंदर में आता है। और चाइल्ड लेबर भी एक बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है, तो हम बच्चों को अपने घर में भी काम नहीं लगा सकते हैं। किसी के बच्चे को अगर हम पढ़ाने लेके आते हैं तो उसको हम काम नहीं लगा सकते हैं, उनको पढ़ाना ही है 14 साल तक तो। हाँ, फिर अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप को हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, किसी भी अगर वो लोग दुकान चला रहा है किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में, वो उसका मम्मी पापा बिजनेसमैन है, तो वहाँ पर वो थोड़ा उनकी मदद कर सकता है, लेकिन वो भी स्कूल आवर्स में करना मना है। उनके वेकेशन में हो गया, फिर अपने स्कूल छुट्टी होने के बाद आधा घंटा एक घंटा के लिए वो थोड़ा मदद कर सकते हैं, वो भी बहुत ही लाइट काम, हैवी काम उनको नहीं दे सकते हैं। और जो एडोलसेंट बच्चे होते हैं, जो मतलब 19 इयर्स ना, जो 14 to 19 होते हैं, उनको हम हल्का हल्का अपने जो घर का दुकान हो गया जिसे मैंने आपको बताया ना, उन सब चीजों में वो मदद कर सकते हैं। बाकी 14 से नीचे 6 वर्ष तक हम किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का काम में जो चाइल्ड लेबर जैसे दिखता है, जैसे कि चाइल्ड लेबर एक्ट में मतलब किस किस एरिया में हम काम नहीं करा सकते वो लिस्ट भी दिया गया है। अच्छा। जैसे आपका फैक्ट्री वर्क हो गया ना, तो फैक्ट्रीज वगैरह में बच्चों को हम काम में नहीं लगा सकते हैं।
1: जैसे कि हमने कार्यक्रम में पहले चर्चा किए थे कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को चाइल्ड ही कहते हैं, तो मैंने अक्सर ऐसे लोगों को कई बार देखा है कि घर के बड़े या फिर कोई रिश्तेदार किसी भी छोटे बच्चे को शराब की दुकान में शराब खरीदने के लिए भेज देते हैं, या फिर किसी भी दुकान में तंबाकू से बने चीजों को खरीदने के लिए भेज देते हैं। तो उस समय क्या है ना, वो बच्चे के जो बहुत ही नाजुक समय होते हैं जीवन के, तो ये कहाँ तक सही है इस तरह के काम बच्चों को लगाना, और आप उनको क्या कहना चाहेंगे आप एक एडवोकेट होने के नाते?
0: जी, ये फिर आपका अलग कानून है जिसको हम कोटपा एक्ट कहते हैं।
1: अच्छा।
0: देखिए, जब एक बच्चे को तंबाकू या फिर शराब कोई खरीदने बेचता है तो वो ऑब्वियसली बच्चा खुद का तो नहीं होगा, उनके खुद का कोई बड़ा ही उनको खरीदने बेचता है, तो इससे क्या होता है, ये तो मतलब कानूनी अपराध है। उसके ऊपर में अगर हम बच्चों को अगर ऐसे कुछ चीज खरीदने बेचते हैं तो उनको अगर इस चीज का ज्ञान नहीं होने से भी ज्ञान आ जाता है, मतलब इसे सीक्रेट कहते हैं या फिर इसे दारू के, वो ये जानने का मन हो जाता है, फिर वो ट्राई करते हैं, ऐसे करके बच्चों को भी मतलब बहुत खराब असर पड़ता है,
1: वो भी गलत रास्ते पे चले जाते हैं,
0: गलत रास्ते में चले जाते हैं। तो इसलिए जो घर के बड़े हैं वो खुद के लिए नहीं सोच के बच्चों के लिए सोच के एटलीस्ट बच्चों को ये सब चीज खरीदने नहीं बेचना चाहिए, वो कानूनी अपराध भी है ये। और जो बेचता है दुकानदार, उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई छोटा बच्चा कोई तंबाकू या फिर कोई शराब खरीदते आता है तो उनको वो नहीं बेचना चाहिए।
1: जी जी जी। तो हमारे आज के इस कार्यक्रम के समय जो है समाप्त होने जा रहे हैं, तो आज आपने हमारा आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में अपने कीमती समय निकाल कर आए और हमें कई सारे महिलाएं एवं बच्चों से जुड़े हुए अधिनियमों के बारे में जानकारी दी, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
0: धन्यवाद आपको भी।
2: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे वन स्टॉप सेंटर तवांग के केस वर्कर एडवोकेट सुनम सामू से, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 और सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्कप्लेस विषय पर हुई एक भेंटवार्ता। इसी के साथ ही कार्यक्रम महिला मंच यहीं पर समाप्त होता है।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, अब पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। कार्यक्रम गीत मंजरी का पहला गीत सुनते हैं हे बेबी फिल्म से सोनू निगम और

अगला गीत सुनते हैं क्रिश फिल्म से सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में। इब्राहिम अश्क के लिखे इस गीत को संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

अगला गीत सुनते हैं कभी अलविदा ना कहना फिल्म से सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे,
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: अगला गीत सुनते हैं फना फिल्म से सोनू निगम, सुनिधि चौहान और आमिर खान की आवाजों में। इस गीत को लिखा है प्रसून जोशी ने और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीत मंजर के अंतर्गत कुछ फिल्मी गीतों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अगला गीत सुनते हैं, नमस्ते लंदन फिल्म से राहत फतेह अली खान की आवाज में। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

अगला गीत सुनते हैं अपनी फिल्म से, सोनू निगम, जयेश गांधी और जसपिंदर नरुला की आवाजों में। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

अगला गीत सुनते हैं दम लगा के हईशा फिल्म से पपॉन की आवाज में। इस गीत को लिखा है वरुण ग्रोवर ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

दम लगा के हाइशा फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत मंजरी यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हुए हैं। श्रोताओं अब पेश है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागरंग। इसमें आज आप सुनेंगे उस्ताद इमरात खान से सितार वादन। तो पेश है कार्यक्रम रागरंग।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे उस्ताद इमरात खान से सितार वादन। इसी के साथ ही कार्यक्रम राग रंग यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:45 हो रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई है। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोप, मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को दोहराया है कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा।
0: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और एस्थेटिक क्लिनिक्स द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा है कि कॉस्मेटिक का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण स्वास्थ्य, रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का अनुग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि आगमन के 21 दिन के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। भारत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों से दर्शाता है।
2: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले 3 महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है।
0: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ अष्टलक्ष्मी राज्यों के लिए यूएसपी पहल के अंतर्गत प्रोजेक्ट कीवी का शुभारंभ किया। सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से श्री सिंधिया ने जानकारी दी है कि 167 करोड़ रुपए का यह मिशन किसानों को सशक्त बनाने के साथ ही मूल्य श्रृंखला और प्रसंस्करण अवसंरचना को मजबूत करेगा तथा कीवी के शेल्फ लाइफ को 7 से 10 दिनों के बढ़ाकर लगभग 45 दिनों तक करेगा। उन्होंने कहा है कि यह पहल कम मूल्य वाले उत्पादों के फ्रीज ड्राई कीवी, जूस और कैंडी जैसे प्रीमियम उत्पादों में परिवर्तित करेगी, जिससे स्थानीय समुदायों को अधिक लाभ प्राप्त होगा। वहीं मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य के सभी कीवी उत्पादक किसानों को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए बधाई दी और पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्र के अनुसार विकास के प्रति केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार भी व्यक्त किया। पेट्रोलियम एवं गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने अरुणाचल प्रदेश के व्यापार एवं वाणिज्य, उद्योग तथा कौशल विकास मंत्री और विभिन्न विभागों के प्रमुखों के साथ बैठक की। केंद्रीय मंत्री ने राज्य के सभी हितधारकों से एनएफटीआई को उत्कृष्टता केंद्र तथा इस क्षेत्र में राज्य और राष्ट्र की संपत्ति बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में एफटीआई, एनआईटी, लॉ कॉलेज सहित कई महत्वपूर्ण संस्थान स्थित है।

मुख्य समाचार। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और एस्थेटिक क्लिनिक्स द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ अष्टलक्ष्मी राज्यों के यूएसपी पहल के अंतर्गत प्रोजेक्ट कीवी का शुभारंभ किया। पेट्रोलियम एवं गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश कोपी ने अरुणाचल प्रदेश के व्यापार एवं वाणिज्य, उद्योग तथा कौशल विकास मंत्री एवं विभिन्न विभागों के प्रमुखों के साथ बैठक की। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले, वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से।

0: इसलिए स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य और आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता है, क्योंकि यह संस्था मुख्य अस्पतालों से काफी दूर स्थित की गई है। उन्होंने कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहां पुलिस चौकसी स्थापित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इस अवसर पर राज्य के शिक्षा आयुक्त अमजाद ताक, गृह एवं आईपीआर आयुक्त न्याली अटक, उद्योग वस्त्र एवं कौशल विकास आयुक्त मिनिंग, पर्यटन सचिव आर मोवा, आईजीपी चुखुआपा, निदेशक डीन तथा एफटीआई के अन्य संकाय सदस्य उपस्थित रहे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिक्षु केंद्र और माध्यमिक शिक्षा केंद्रों पर लागू होंगे। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्राथमिकता से सभा की प्रतिक्रियाओं को एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना, समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
1: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं।
2: आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत की हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो, या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक, लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष।
0: मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच कल तक देश के पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे और कर्नाटक में तेज बारिश हो सकती है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने भी आज अरुणाचल प्रदेश के 15 जिलों वेस्ट कामेंग, पाके केसांग, पापुम पारे, अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी, कुरुंग कुमे, क्रा दादी, सियांग, अपर सियांग, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, नामसाई, चांगलांग, तिराप और लोंगडिंग के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा है कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार संभावना प्रदान करता है, वहीं से ठोस नियमों, गहन शोध और नीतिगत निगरानी द्वारा सही दिशा में दी जानी चाहिए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: This is Akashvani, the news read by Morgan Bagra. Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni, in a joint statement, reaffirmed their commitment to cooperate on the India-Middle East Economic Corridor, IMEC, recognizing its transformational potential in reshaping and promoting global trade, connectivity and prosperity. Appreciating the preliminary discussions around the project, they encouraged the first IMEC ministerial meeting to take concrete steps for advancing this initiative in 2026. In a joint press conference with Prime Minister Narendra Modi in Rome, Italian Prime Minister Giorgia Meloni described IMEC as a major connectivity and economic corridor linking Europe, the Middle East and India with the potential to strengthen trade, investment and supply chain resilience. Ms. Meloni said, strengthening interconnectivity between the regions remains an important priority and added that both countries strongly support the

मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवा केंद्र है। समय शाम के 6:11 हुए हैं। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम सुनने से पहले आइए सुनते हैं एक सूचना। डीडीएसी कार्यालय तवांग जिला द्वारा प्राप्त सूचना अनुसार विभिन्न विषयों में गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों की नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पीजीटी पद हेतु रिक्तियां बायोलॉजी में 1, फिजिक्स में 1, इंग्लिश में 1 और ज्योग्राफी में 2। टीजीटी पद हेतु रिक्तियां इंग्लिश में 1, हिंदी में 2, मैथ्स में 3 और साइंस में 4।

चयनित गैस फैक्ट्री को 30,000 रूपये प्रतिमाह मान्यदेय दिया जाएगा और नियुक्ति प्रारंभिक रूप से 10 महीने के लिए की जाएगी। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 29 मई 2026 दोपहर 3 बजे तक है और अपूर्ण या देर से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए DDAC तवांग के कार्यालय से संपर्क करें। सूचना समाप्त हुआ। श्रोताओं, आप पेश है कार्यक्रम जरोखा। इसमें हम आपको अवगत कराते हैं हमारे केंद्र से आज एवं कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियों से। तो चलिए पहले आपको आज के कार्यक्रमों से अवगत कराते हैं। आज शाम 6:20 पर कार्यक्रम शिलेंद्र में सका दावा माह के अवसर पर बुद्ध पार्क तवांग में CBCS तवांग मठ के दर्शन शास्त्र शिक्षक केशी संगे टशी द्वारा मार्ग की जर आध्यात्मिक गुरु पर विश्वास तथा गुरु और शिष्य की योग्यताएं विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए सुनेंगे। तत्पश्चात लामा मेतो टशी और साथियों से शेल्डन खुंचा सुपा थपके थुजेमा और लामा छपा सकुर का शेष भाग। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार शाम 7 बजे 7:10 पर कार्यक्रम पोम ऑफ द डे। तत्पश्चात कार्यक्रम एक और अनेक में आनंद लीजिए गायक उदित नारायण और अन्य गायकों के साथ चंद फिल्मी नगमों का। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर 7:55 पर कार्यक्रम देशभक्ति गीत में आनंद लीजिए मैरीकॉम फिल्म से एक देशभक्ति गीत। आज शाम 8 बजे कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत में आनंद लीजिए आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदाबहार पुराने नगमों का। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स कैन शाम 8:30 पर तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज एट 9 आज रात 9 बजे। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम की जानकारी। आइए अब आपको अवगत कराते हैं कल यानी 22 मई 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से। रोजाने की तरह हमारा कल का प्रसारण आरंभ होगा दोपहर 2 बजे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी में समाचार के साथ। तत्पश्चात 2:15 पर दोपहर समाचार। भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना में सुनिए गांधी स्मृति और सुरेश वाडकर से चंद हिंदी देवगीत कल दोपहर 2:30 पर। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत आनंद लीजिए वांकप वांगसू से चंद वांगचू गीतों का कल दोपहर 3 बजे। कल दोपहर 3:30 पर कार्यक्रम मेरी बात। तत्पश्चात कार्यक्रम नारी संगीत में आनंद लीजिए ऊंचाई फिल्म से अभिजीत श्रीवास्तव सुल्तान फिल्म से राहत फतेह अली खान आई हेट लव स्टोरीज फिल्म से श्रेया घोषाल और सोना महापात्र बागी फिल्म से अरिजीत सिंह और रोचक किला की आवाजों में चंद फिल्मी नगमों का। कल दोपहर 3:50 पर कार्यक्रम गीत मंजरी में आनंद लीजिए दिल्ली 6 फिल्म से मोहित चौहान दिल तो बच्चा है फिल्म से मोहित चौहान पैडमैन फिल्म से मोहित चौहान वांटेड फिल्म से शान और श्रेया घोषाल वीर फिल्म से राहत फतेह अली खान और सुजैन डिमेलो एक पहेली लीला फिल्म से उजैर जायसवाल बिल्लू फिल्म से सोहम चक्रवर्ती और आकृति कक्कर जब वी मेट फिल्म से श्रेया घोषाल शेफ फिल्म से अरमान मलिक और जीनियस फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाजों में चंद फिल्मी नगमों का। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग में

आनंद लीजिए पंडित शिव कुमार शर्मा से संतूर वादन कल शाम 4:30 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार शाम 4:45 पर। रोजाना की तरह मोनपा कार्यक्रम नमथा लेरिम कल शाम 5:00 पर श्री लोबसांग तोपदेन द्वारा दैनिक मुख्य सूचना मोनपा में 5:35 पर साप्ताहिक मोनपा कार्यक्रम क्विंसेल लेरिम सेरा शाम 6:00 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा कल शाम 6:20 पर कार्यक्रम शिल्डन में सुनिए लामा मैतोटशी और साथियों से शिल्डन लामा छपा का शेष भाग। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार शाम 7:00 कल शाम 7:10 पर कार्यक्रम पोम ऑफ द डे तत्पश्चात साप्ताहिक कार्यक्रम दर्पण में आनंद लीजिए गीतकार समीर द्वारा लिखे चंद फिल्मी नगमों का। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर कल शाम 7:55 पर कार्यक्रम देशभक्ति गीत में सुनिए स्वदेश फिल्म से एक देशभक्ति गीत कल शाम 8:00 कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत में आनंद लीजिए आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदबहार पुराने नगमों का। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स कैंट कल शाम 8:30 पर तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज एट 9 कल रात 9:00 कल रात 9:16 पर आकाशवाणी तवांग के सभी प्रसारण समाप्त होंगे। तो श्रोताओं ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। इसी के साथ ही कार्यक्रम जरोखा यहीं पर समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा मनपा में कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: Hai nina sta da lungthin ga tawang nemyi ngodun sindul lirima na ji de dujin kebrjin siba saga da wa ses le digap ga tawang konbak nangchi rishung lobnir kang singi gen gen kishi sangi ta shi si buddha par ga che sen phep kan na sha gibi singin tendong kor sungje nangunin ejik shuje lama medo ta shi si kristo no gyunchak sumba tabge tuje ma nin lama chebok choga sa nangbo langina uzumar mutiya no no tuje grok nin karma khili je shendun lirima sa nangsa langina udeb ga desh no
1: Akashvani samachar ke saath main Farhat Naz भारत और इटली ने व्यापार निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
2: भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों संयुक्त अरब अमीरात नीदरलैंड स्वीडन नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री की पांच देशों की यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि ये सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कुवन ओह यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। बैठक में खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है।

0: सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंपों पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और सुचारू समुद्री परिचालन के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। ये यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रों के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। भारत ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुट वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आज 11वीं वार्षिक ब्रिक्स आतंकरोधी कार्य समूह की बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आतंकियों को पनाह देने और समर्थन करने वालों को जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता पर बल दिया। चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। ये सम्मेलन 28 से 31 मई तक नई दिल्ली में होना था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। गुजरात पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The government today reassured that India has sufficient supplies of crude, petrol, diesel, natural gas and LPG, with refineries operating at optimum capacity to meet the demand. LPG production has been ramped up and every day around 46 to 47,000 tons of LPG are produced in refineries. Addressing an interministerial briefing in New Delhi on the West Asia situation, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma said that supply remains stable and steps are being taken to ensure availability across all petrol pumps. Additional Secretary in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Mukesh Mangal said, they are continuously coordinating with the Ministry of External Affairs, Indian Missions and Maritime Stakeholders to ensure the safety of seafarers and smooth maritime operations. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today said that India and the United States are working as natural partners and complement each other across sectors, including technology innovation, high-precision defense, digital data centers, quantum computing, and medical devices. Addressing the annual leadership summit of the American Chamber of Commerce in New Delhi, Mr. Goyal said the partnership between the two countries is strengthened by mutual trust and shared economic interests.
3: America and India truly are working as natural partners. We complement each other. America is looking for a trusted partner. I think India has proven track record over decades of truly working as a country, as a set of businesses here who respect the intellectual property of foreign companies, who can be trusted to deliver high quality on time. There's a large pool of talent available for all of you, and in some sense these are two economies which totally complement each other.
2: Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw today held a high-level security review meeting in New Delhi with field officers. During the meeting, it was noted that preliminary investigations into several recent fire incidents in the trains have revealed the involvement of anti-social elements. The ministry said that such incidents has been taken up seriously and the Railway Protection Force is actively probing them. The discussions during the security review meeting focused on strengthening intelligence gathering mechanisms from the field through an improved reporting system. India

0: has called for united global efforts to combat terrorism in all its forms, including cross-border terror. Addressing the 11th annual BRICS Counter-Terrorism Working Group meeting in New Delhi today, Ministry of External Affairs Secretary West C.B. George stressed the need to hold accountable those sheltering and supporting terrorism. He called for zero tolerance against terrorism and stronger international cooperation to tackle terror financing, radicalization, and misuse of emerging technologies by terrorist groups. The 4th India-Africa Forum Summit, which was scheduled to be held from 28th to 31st of May in New Delhi, has been postponed in view of the evolving health situation in parts of Africa. External Affairs Ministry said in a statement that consultations were held between India, Chairperson of the African Union, and the African Union Commission. In Uttarakhand, 5 people, including 2 women, were killed today after a vehicle plunged into a deep gorge near Dhaila village on the Santorium Ratighat bypass road in Bhavali area of Nainital district. Teams from the local police and the state disaster response force recovered all the bodies from the gorge. Police are investigating the cause of the accident. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar conducted the computerized draw for selection of yatris for the Kailash Mansarovar Yatra 2026. The 2026 edition of the Yatra will commence in June and conclude in August. External Affairs Ministry said in a statement that a total of 1,000 yatris have been selected through a fair, computer-generated, random, gender-balanced selection process. Benchmark domestic equity indices ended on a negative note after a volatile trade today. The Sensex declined 135 points to close at 75,183, while the Nifty dipped marginally by 4 points to settle at 23,655. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी में समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:10 हुए हैं। श्रोताओं, अब पेश है कार्यक्रम पोम ऑफ द डे। इसमें आज आप सुनेंगे मुन्यू विद्या निकेतन तवांग के दूसरी कक्षा में पढ़ रही छात्र तिंजिम पेमा से एक कविता। कविता का शीर्षक है घर।
2: नमस्ते, मेरा नाम है तंजिम पेमा और मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा स्कूल का नाम है मंजूर विद्या निकेतन तवांग। मैं आज आप सभी को एक कविता सुनाना चाहती हूँ। कविता का नाम है घर। पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, घूम धाम ले खेल खाम ले नहीं भूलता लेकिन घर नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी, प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। जब थक कर वापस आते हैं कैसे बीच बीच जाता कर, चिला पिला आराम दिलाकर नहीं ताजगी देता कर, धन्यवाद।
1: इसी के साथ ही कार्यक्रम पोमुद्रे यहीं पर समाप्त होता है।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: श्रोताओं, अब पेश है कार्यक्रम एक और अनेक। इसमें आज आप सुनेंगे गायक उदित नारायण और अन्य गायक के साथ कुछ फिल्मी नगमों का। कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं गदर, एक प्रेम कथा फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है उत्तम सिंह ने।

अगला गीत सुनते हैं तेरे नाम फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

अगला गीत सुनते हैं धड़कन फिल्म से उदित नारायण, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम सैफी ने।

अगला गीत सुनते हैं कभी खुशी कभी गम फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

अगला गीत सुनते हैं कहो ना प्यार है फिल्म से, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। इस गीत को लिखा है इब्राहिम अश्क ने और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनते हैं मुझसे शादी करोगी फिल्म से उदित नारायण और सोनू निगम की आवाजों में। इस गीत को लिखा है जलीस शेरवानी ने और संगीत दिया है साजिद वाजिद ने।

मुझसे शादी करोगी फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम एक और अनेक यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:45 हो रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारे साथ बने रहें।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और सप्लाई चेन की मजबूती को बढ़ावा देने के लिए इंडिया मेडिकल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC को आगे विकसित करने पर सहमति जताई है। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी 41वीं समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी ने IMEC पर सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और इसके वैश्विक व्यापार, कनेक्टिविटी और समृद्धि को नया रूप देने वाली परिवर्तनकारी पहल बताया है। दोनों नेताओं ने परियोजना से जुड़ी प्रारंभिक चर्चाओं की सराहना करते हुए 2026 में होने वाली पहली IMEC मंत्रिस्तरीय बैठक में इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने का आह्वान किया। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ अष्टलक्ष्मी राज्यों के लिए USP पहल के अंतर्गत प्रोजेक्ट कीवी का शुभारंभ किया। सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से श्री सिंधिया ने जानकारी दी है कि 167 करोड़ रुपए का यह मिशन किसानों को सशक्त बनाने के साथ ही मूल्य श्रृंखला और प्रसंस्करण अवसंरचना को मजबूत करेगा तथा कीवी की सेल्फ लाइफ को 7 से 10 दिनों के बराबर लगभग 45 दिनों तक करेगा। उन्होंने कहा है कि यह पहल कम मूल्यों वाले उत्पादों को फ्रीज ड्राइड कीवी जूस और कैंडी जैसे प्रीमियम उत्पादों में परिवर्तित करेगी, जिससे स्थानीय समुदाय को अधिक लाभ प्राप्त होगा। 14 दोईमुख विधानसभा क्षेत्र के विधायक नाबाम विवेक ने आज अपने निजी संसाधनों से गुमतो सर्कल ऑफिसर कार्यालय को एक नई बोलेरो वाहन भेंट की। इस अवसर पर विधायक ने कहा है कि जमीन स्तर पर प्रशासनिक कार्यकुशलता सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है और उन्होंने जनकल्याण के लिए कार्य कर रहे सरकारी कार्यालयों के निरंतर सहयोग देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने जानकारी दी है कि निकट भविष्य में सांदूपोता और तारासो सर्कल क्षेत्रों को भी इसी प्रकार की सहायता प्रदान की जाए। अरुणाचल प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने राज्य भर में सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों को आधिकारिक रूप से सख्त तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया है। यह निर्देश सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा 2003 के प्रावधानों के तहत लागू की गई है। यह आदेश गत 19 मई 2026 से राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उपकेंद्रों, मेडिकल कॉलेजों तथा प्रत्येक जिले के निजी स्वास्थ्य संस्थानों पर लागू होगा। इस बीच स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सभी नागरिकों, मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों से इस पहल को सफल बनाने में सहयोग करने की अपील की है। निर्जुली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पशुधन टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अन्या रायो, डिक्रोंग और आसपास की कॉलोनियों को शामिल किया गया है। वेटनरी एंड सेंटर द्वारा आयोजित इस अभियान का उद्देश्य फुट एंड माउथ डिजीज, क्लासिकल स्वाइन फीवर और पेस्टेस पिटेट्स रूमिनेंट्स जैसी बीमारियों से पशुओं की सुरक्षा करना है। अभियान के दौरान सहायक पशु चिकित्सा पारो के ताचो ने

0: समुदाय के पशु स्वास्थ्य की सुरक्षा में इस अभियान की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानकारी प्रदान की। इस बीच श्री ताचा ने स्थानीय पशुपालकों, पीआरआई नेताओं और स्वयं सहायता समूहों से पूर्ण सहयोग देने तथा टीकाकरण के दौरान पशुओं की नियंत्रित रखने में मदद करने की भी अपील की है। नामसाई उपायुक्त सीआर खांपा ने आज नामसाई में सब नेशनल मलेरिया एलिमिनेशन वेरिफिकेशन पर आयोजित 3 दिवसीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य वर्ष 2022 से स्वदेशी मलेरिया मामलों को शून्य बनाए रखने वाले जिलों को तैयार करना और मान्यता प्रदान करना है। प्रशिक्षण में उन सभी 19 जिलों को प्रतिनिधियों के सक्रिय रूप से भाग लिया है जिन्होंने स्वदेशी मलेरिया मामलों को शून्य बनाए रखा हुआ है। अपर सियांग उपायुक्त सह जिला निर्वाचन अधिकारी तालो जेरांग ने आज यिंगक्योंग स्थित डीसी कार्यालय कॉन्फ्रेंस हॉल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर एक बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताओं, आवश्यकताओं, प्रक्रिया और समय सारणी पर प्रकाश डाला है। उन्होंने पुनरीक्षण प्रक्रिया के सफल संचालन में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए एक पार्टी प्रतिनिधियों को आपस में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने तथा लेवल एजेंट नियुक्त करने का एक सलाह जारी की जो पूरी एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों की सहायता में अहम भूमिका निभाएंगे। और सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत कल अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिला स्थित सितांग गांव के निवासियों द्वारा एक अतिरिक्त समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। औपचारिक हस्ताक्षर समारोह पोलिंग मुख्यालय स्थित उपायुक्त कार्यालय में आयोजित हुआ है। परियोजना के प्रति समुदाय के बढ़ते और मजबूत समर्थन को दर्शाते हुए सितांग गांव के 12 अतिरिक्त परिवारों ने परियोजना की प्रस्तावित प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए औपचारिक रूप से एमओयू पर हस्ताक्षर किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी ईटानगर, द न्यूज रेड बाय मॉर्गन बागरा। Union Minister of Development of North Eastern Region, Jyotiraditya M. Sindhya, along with Chief Minister Pema Khandu, yesterday launched Project Kiwi under the USP initiative for the Ashtalakshmi states. Sharing the news in a social media post, Mr. Sindhya said that the Rs. 167 crore mission will empower farmers, strengthen value chains and processing infrastructure, and extend kiwi shelf life from 7 to 10 days to nearly 45 days. He further added that the initiative will also transform low-value produce into premium products, including freeze-dried kiwi, juice and candy, ensuring greater value accrues to local communities. Meanwhile, Chief Minister Pema Khandu has congratulated all the kiwi grower farmers of the state on this significant initiative and expressed gratitude to Prime Minister Narendra Modi for his focused approach towards sector-wise development in the northeastern states. 14 Domuk MLA Nabam Vivek today donated a new Bolero vehicle to the office of the Gumta Circle officer from his own resources. Speaking on the occasion, the MLA stated that administrative efficiency at the grassroots level remains a priority and assured continued support to the government officers working for public welfare. He further informed that similar assistance would also be extended to the Sangdupota and Taraso Circle areas in the near future. Meanwhile, officials of the Gumdo CO office have expressed gratitude for the contribution and stated that the vehicle would significantly aid in carrying out official responsibilities and improving service delivery to the people. The Department of Health and Family Welfare, Government of Arunachal Pradesh, has officially declared all hospital and healthcare premises across the state as strict tobacco-free zones. This directive is implemented under the provisions of the Cigarettes and Other Tobacco Products Act 2003, applies to all government hospitals, community health centers, primary health centers, sub-centers, medical colleges and private healthcare facilities in every district which affected from 19th of June. In the meantime, the Department of Health and Family Welfare appeals to all citizens, patients and healthcare workers to cooperate in making this initiative a success. A massive livestock vaccination drive is underway across Nirjuli, covering areas like Anya Rayo, Dikrong and surrounding colonies. Organized by the Veterinary Aid Center, the campaign targets foot and mouth disease, classical swine fever and pestis ruminans. During the drive, Assistant Veterinarian Paro K. Tacha briefed the community about the drive's crucial role in protecting animal health.

0: मैरीकॉम फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम देशभक्ति गीत यहीं पर समाप्त होता है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 8 बजे हैं। श्रोताओं, अब पेश है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत। कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत सुनिए आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद फिल्मी नगमे। आज इस कार्यक्रम का पहला फरमाइश हमें प्राप्त हुआ है लहू पैगंग के पेमाटशी दर्जी नाकू तेंजिन दावा तेंजिन सांगे निमा सांगे और लोपसावामू से। इन्होंने फरमाइश किया है डिस्को डांसर फिल्म से यह गीत बप्पी लहरी की आवाज में। इस गीत को लिखा है अनजान ने और संगीत दिया है बप्पी लहरी ने।

अगला फरमाइश हमें प्राप्त हुआ है सोनबिल कुडली असम के हितेंद्र दास से। इन्होंने फरमाइश किया है अंधा कानून फिल्म से यह गीत आशा भोसले और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद फिल्मी नगमों का। कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए आगे बढ़ते हैं अगले फरमाइश की ओर जो हमें प्राप्त हुआ है। मुरादाबाद दुल्हापुर उत्तर प्रदेश के मुकेश कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह से इन्होंने फरमाइश किया है शोर फिल्म से यह गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है इंद्रजीत सिंह ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अगला फरमाइश हमें प्राप्त हुआ है जनकपुरी सहरनपुर के जॉन डी कैस्ट्रो, पर्ल डी कैस्ट्रो, रोजी डी कैस्ट्रो और विलिस डी कैस्ट्रो से। इन्होंने फरमाइश किया है संजोग फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। इस गीत को लिखा है राजेंद्र किशन ने और संगीत दिया है मदन मोहन कोहली ने।

श्रोताओं अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी की व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप भी इस शुरू की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत का नाम और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा यह रोमानी और यादोबारा कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हंसी यादों, कुछ और नगमों के साथ।

आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 8:30 हो रहे हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली संप्रसार स्पोर्ट्स के अंत, तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज 8।

0: नमस्कार, मैं हूं शक्ति सिंह और स्पोर्ट्स कैन में आज आप सभी का स्वागत है। हम एक बार फिर मौजूद हैं नए क्लेवर, नए रंग और नए अंदाज के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का ताजा अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, और सब कुछ अधिक डिटेल के साथ। तो शुरू करते हैं खेलों की बात स्पोर्ट्स कैन के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच जारी। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। हॉकी इंडिया ने पुरुष अंडर 18 एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय टीम की घोषणा की। 46वीं जूनियर राष्ट्रीय रोविंग प्रतियोगिता गोरखपुर में संपन्न हुई। अश्मिता चलिहा मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कॉम्पिटिशन कल से झारखंड के रांची में शुरू। तो शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को आईपीएल के रोमांचक मुकाबलों के आसमान छूते रोमांच के साथ, जहां आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 11वें ओवर में बिना कोई विकेट खोए 117 रन बना लिए हैं। चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। गुजरात की टीम जो है वो पहले ही प्लेऑफ का अपना टिकट कटा चुकी है, जबकि चेन्नई चाहेगी कि आज का मैच जीता जाए, अच्छे अंतर से जीता जाए और टॉप 4 में अपनी पकड़ मजबूत रखी जाए। इससे पहले कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस पर जीत दर्ज करते हुए प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी संभावनाओं को बरकरार रखा। सुनते हैं इस मैच का पूरा हाल।
1: ईडन गार्डन्स में कल करो या मरो के मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराकर प्लेऑफ की दौड़ में खुद को बनाए रखा है। पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी मुंबई इंडियंस ने 8 विकेट पर 147 रन बनाए। कॉर्बिन बॉश ने टीम के लिए 18 गेंद में सर्वाधिक 32 रन की नाबाद पारी खेली। कप्तान हार्दिक पांड्या ने 26 रन का योगदान दिया। कोलकाता की ओर से सौरभ दुबे, कैमरन ग्रीन और कार्तिक त्यागी ने 2-2 विकेट लिए। 148 रन का सामान्य लक्ष्य केकेआर ने 19वें ओवर में हासिल कर मुकाबला अपने नाम कर लिया। कोलकाता की ओर से मनीष पांडे ने 33 गेंद में 45 और रोबमैन पॉवेल ने 30 गेंद में 40 रन बनाए। अंतिम ओवर में रिंकू सिंह 9 और अंकुल रॉय ने 4 रन की नाबाद पारी खेलते हुए टीम को 7 गेंद शेष रहते जीत दिलाई।

0: कॉर्बिन बॉश ने मुंबई के लिए सर्वाधिक 3 विकेट लिए, जबकि दीपक चाहर, गजनफर और जसप्रीत बुमराह को एक एक विकेट मिला। मनीष पांडे को उनकी पारी और शानदार फील्डिंग के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स ने प्लेऑफ की दौड़ में अपनी उम्मीद बरकरार रखी है। अब उन्हें दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी और राजस्थान और पंजाब के अगले मैचों के परिणाम पर निर्भर रहना होगा। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो कहा जा सकता है कि कोलकाता अपने कल के मैच के बाद आने वाले लीग के सभी मैच बहुत ध्यान और सतर्कता से खेलेगी भी और देखेगी भी। और अब आईपीएल के बाद रुख करते हैं हॉकी के टर्फ का, जहां हॉकी इंडिया ने आज आगामी पुरुष अंडर 18 एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। जापान के ताकामिघारा में 29 मई से 6 जून तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता के लिए केतन कुशवाहा को टीम का कप्तान बनाया गया है। आइए सुनते हैं किन किन खिलाड़ियों को इस टीम में जगह मिली।
2: सावन कुमार और आयुष रजक गोलकीपर की भूमिका में टीम में शामिल किए गए हैं, जबकि डिफेंडर के रोल के लिए अंश बहुता, अरमान सोरेंग, आशीष तानीपूर्ति, अर्शदीप सिंह, अवि मानिकपुरी और रोमित पाल को चुना गया है। मिडफील्ड की जिम्मेदारी राहुल यादव, प्रेमचंद सोए, वरिंदर सिंह, करण गौतम और सिद्धार्थ बेन के कंधों पर होगी। वहीं कप्तान केतन, आकाशदीप, गाजी खान, शाहरुख अली और प्रहलाद राजभर के साथ फॉरवर्ड की भूमिका में नजर आएंगे। भारत को पूल ए में दक्षिण कोरिया, मेजबान जापान, चीनी ताइपे और कजाकिस्तान के साथ रखा गया है। भारतीय टीम अपने पूल स्टेज कैंपेन की शुरुआत 29 मई को कजाकिस्तान के खिलाफ करेगी। इसके बाद भारत 31 मई को मेजबान जापान से, 1 जून को साउथ कोरिया से और 3 जून को चीनी ताइपे के साथ मुकाबला करेगी। पूल ए और पूल बी की टॉप 2 टीमें सीधे 5 जून को होने वाले सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। वहीं टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला 6 जून को खेला जाना है। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो कह सकते हैं कि एक बड़ी प्रतियोगिता, क्योंकि ये पूरा वर्ष बड़ी प्रतियोगिताओं का है, जहां एशिया गेम्स और कॉमनवेल्थ जैसे बड़े आयोजन होने हैं और सभी खेल अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए नजर आ रहे हैं। और अब हॉकी के बाद चलते हैं मलेशिया के कुआलालंपुर, जहां बैडमिंटन कोर्ट में आज मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में भारत की अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। आइए सुनते हैं प्रतियोगिता में आज खेले गए भारतीय खिलाड़ियों के मुकाबलों का पूरा हाल।
3: अश्मिता चाहिला ने क्वालिफायर और राउंड ऑफ 32 के बाद आज प्री क्वार्टर फाइनल में भी अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा। युवा अश्मिता ने सिर्फ 27 मिनट चले मुकाबले में मलेशिया की गोह जिन वेई को 21-13, 21-16 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब उनका सामना डेनमार्क की 8वीं वरीयता प्राप्त लाइन होजमार्के जर्सफेल्ट से होगा। हालांकि अश्मिता के अलावा भारत का कोई भी खिलाड़ी जीत दर्ज नहीं कर सका। मालविका बंसोड़ डेनमार्क की केजर्सफेल्ट से 21-16, 8-21 और 15-21 हार कर दूसरे दौर में बाहर हो गई थी। वहीं देविका सिहाग चीन की चेन युफेई से 16-21 और 13-21 से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गईं। इस बीच एमआर अर्जुन और हरिहरन अमस्कारुनन की हार के साथ ही भारत का मेंस डबल अभियान भी समाप्त हो गया है। मिक्स डबल्स में सात्विका रेड्डी कनापुरम और राधिका शर्मा की जोड़ी अमरीका के प्रेस्ली स्मिथ और जेनी गाय के हाथों 12-21 और 25-27 से हार का सामना करना पड़ा। अब इस टूर्नामेंट में अश्मिता एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनसे भारत को उम्मीदें होंगी। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो भारतीय उम्मीदों का भार अपने कंधों पे लिए अश्मिता लगातार क्वालिफायर्स, फिर राउंड ऑफ 32 और राउंड ऑफ 16 में जीत दर्ज करते हुए अब राउंड ऑफ 8 की तरफ पहुंच गई हैं, यानी क्वार्टर फाइनल, जहां वो अपना कल मुकाबला खेलने उतरेंगी। और अब बात करते हैं गोरखपुर की, जहां आज पानी की धार के बीच खिलाड़ी पदकों के लिए दौड़ लगाते हुए नजर आए। 46वीं जूनियर राष्ट्रीय रोविंग प्रतियोगिता का आज गोरखपुर के रामगढ़ ताल में समापन हो गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश सहित 20 राज्यों की टीम ने चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। समापन समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विजेताओं को सम्मानित किया और कहा कि उत्तर प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स के एक बड़े आयोजन स्थल के रूप में सामने आ रहा है।
4: रामगढ़ताल नेशनल चैंपियनशिप के लिए यहाँ पे प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। रामगढ़ताल पर 2026 में एशियन गेम्स की तैयारी के लिए भारतीय महिला रोइंग टीम का जो राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर है आयोजित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाटर स्पोर्ट्स का एक सेंटर भी विकसित किया है। तो रामगढ़ताल इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स के हब के रूप में आज अपनी एक नई पहचान बना चुका है।
1: तो नई पहचान बनाता हुआ रामगढ़ ताल रोज नए कीर्तिमान और कमाल स्थापित कर रहा है और अब इन खेलों पर अधिक अपडेट के साथ

0: गोरखपुर से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता प्रेमचंद। प्रेमचंद, आज गोरखपुर में किस किस टीम की नौका पार लगते हुए नजर आई है और बताइए कि आज के मुकाबलों के नतीजों में कौन कौन सी टीम बाजी मारते हुए दिखी।
1: जी जी जी, बालक वर्ग में अपना दबदबा कायम रखते हुए आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी ओवरऑल चैंपियन बनी, जिन्होंने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। बालिका वर्ग में शानदार प्रदर्शन के दम पर मध्य प्रदेश ने 2 स्वर्ण, 1 रजत व 1 कांस्य के साथ ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन टीमों को ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया। जहां तक बात है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की टीम ने भी इस बार एक गोल्ड मेडल जीता है। बालक वर्ग के क्वाड्रपल स्कल के फाइनल में यूपी की टीम विजयी रही। इस मुकाबले में 2रे स्थान पर बंगाल और 3रे स्थान पर उड़ीसा की टीम रही।
0: जी प्रेमचंद, हमें इस मैदान के बारे में भी बताइए कि बड़ी रोचक बात है कि गोरखपुर का ये मैदान अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की मेजबानी कर रहा है और राष्ट्रमंडल तक के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहा है।
1: जी जी जी जी, जैसा कि आपने अभी सुना, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि रामगढ़ ताल जो है वाटर स्पोर्ट्स हब के रूप में बन चुका है, एक वाटर स्पोर्ट्स हब बन गया है। यहाँ पर 49 करोड़ रुपए की लागत से 20 स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। यूपी में देखें तो वाटर स्पोर्ट्स की संभावनाएं बहुत समृद्ध है। प्रदेश में गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, राप्ती जैसी नदियां हैं जहां वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रदेश में बलिया, कुशीनगर, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, कानपुर जैसे शहरों में वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। ओवरऑल गोरखपुर में बहुत सारी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भी शिलान्यास किया था, जिसमें कम से कम 30,000 दर्शक जो है का ये स्टेडियम बनेगा। जी
0: बिल्कुल, एक बेहतर केंद्र के रूप में उभरते हुए भारत के तमाम शहर और उसी कड़ी में गोरखपुर भी। और अब गोरखपुर से चलते हैं झारखंड के रांची की तरफ, जो कि तैयार है नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कॉम्पिटिशन की मेजबानी के लिए, जो कल से 25 मई तक आयोजित की जाएगी। ओलंपियन मुरली श्रीशंकर, अन्नू रानी, तजेंद्र पाल सिंह तूर, सर्वेश कुशारे और तेजस्विनी शंकर जैसे भारतीय दिग्गज एथलीट भी इस प्रतियोगिता में भाग लेते नजर आएंगे। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
2: भारत की प्रमुख घरेलू एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में से एक नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन, जिसे आमतौर पर फेडरेशन कप के नाम से जाना जाता है, बिरसा मुंडा स्टेडियम में होने वाले इस साल का यह आयोजन कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए एकमात्र चयन ट्रायल के तौर पर काम करेगा। राष्ट्रमंडल खेल 23 जुलाई से 2 अगस्त तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने हैं। नीरज चोपड़ा की गैर मौजूदगी में सचिन यादव, रोहित यादव और किशोर जेना कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में क्वालिफाई करने के लिए एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। वहीं महिलाओं में अन्नू रानी भाला फेंक स्पर्धा में चुनौती पेश करेंगी। लंबी कूद में मुरली श्रीशंकर पुरुष वर्ग में और शैली सिंह महिला वर्ग में चुनौती पेश करेंगी। पुरुषों के ट्रिपल जंप में अब्दुल्ला बूबकर और शॉट पुट में तेजिंदर पाल सिंह तूर खेलते नजर आएंगे। राजेश रमेश 400 मीटर, मोहम्मद अफसल 800 मीटर और सर्वेश कुशारे ऊंची कूद में हिस्सा लेंगे। महिलाओं के 400 मीटर स्पर्धा में विथया रामराज एक्शन में नजर आएंगे, जबकि तेजस्विनी शंकर कथानॉल में हिस्सा लेंगे।
0: तो रोमांच तैयार होने को बेकरार है। और अब बात करते हैं हॉकी कोच बलदेव सिंह की, जिनको 25 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित करेंगी। 75 वर्षीय बलदेव सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बसे एक छोटे से शहर शाहबाद मारकंडा को बेहतरीन हॉकी प्रतिभा का केंद्र बना दिया है। सुनते हैं बलदेव सिंह के जीवन पर आधारित ये रिपोर्ट।
3: जिंदगियां सवारना खेल खेल में, श्री बलदेव सिंह पद्मश्री 2026। 15 नवंबर 1950 को लुधियाना के किसान परिवार में जन्मे बलदेव सिंह का बचपन आर्थिक तंगी में बीता।
4: मैं उस समय बहुत छोटा था जब मैंने पहली बार मैदान में राष्ट्रीय स्तर का ऐसा मैच देखा जिसमें बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खेल रहे थे। उन्हें देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ और मेरे मन में ये विचार आया कि मैं भी एक दिन ऐसा खिलाड़ी बनूं।
3: बलदेव सिंह ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स बेंगलुरु से हॉकी कोचिंग का डिप्लोमा प्राप्त किया और 1981 में हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ज्वाइन करके हरियाणा के शाहबाद मारकंडा में कोच के पद पर आ गए। शाहबाद उनकी कर्म भूमि बन गया और उन्होंने सबसे पहले यहाँ हॉकी ग्राउंड्स तैयार किए। बलदेव सिंह जी के कड़े परिश्रम और अनुशासित ट्रेनिंग से उनके खिलाड़ी लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने लगे। जल्दी ही वे भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच भी नियुक्त हुए और टीम

0: कई सफलताएं दिलाई।
1: मैंने देखा कि लड़कियां भी खेलना चाहती हैं, पर उनके सामने कई अड़चनें थी। हमने उनके परिवार वालों को समझाया।
2: उन्होंने बड़ी गाड़ी ली बच्चों की मदद के लिए। जब प्रतियोगिताएं दिल्ली या कहीं दूर होती थी तो ये लड़कियों को घर लेने और छोड़ने भी जाते थे, और आवश्यकता पड़ने पर ये आर्थिक सहायता भी देते थे।
1: हॉकी खेलने से यहाँ के बच्चों को मान सम्मान और जॉब भी मिली। लड़कियाँ आगे आएंगी तो इंडिया आगे आएगा।
0: बलदेव सिंह जी की ट्रेनिंग में लड़कियों की स्कूल टीम ने भी कई टूर्नामेंट जीते और आगे चलकर देश का गौरव बनी।
3: मेरे लिए वो सिर्फ एक कोच नहीं थे, मेरे लिए वो एक गाइड, मेंटोर और एक फादर फिगर, जिसको फिकर रहती थी कि हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए।
4: उस समय हमारे शाहबाद में कहावत थी कि किसी के घर बेटी पैदा हो तो उसे बलदेव जी के मैदान में छोड़ दो, उसकी जिंदगी अपने आप संवर जाएगी।
0: शाहबाद से इतने खिलाड़ी निकलने लगे कि इसे हॉकी की नर्सरी कहा जाने लगा। सन 2017 में बलदेव सिंह जी भारत की ओलंपिक टास्क फोर्स में भी शामिल हुए और भारत की स्पोर्ट्स पॉलिसी में योगदान दिया।
1: मेरी पूरी जिंदगी हॉकी और खिलाड़ियों के लिए है।
0: सच ही है, बलदेव सिंह गुरु नहीं, खुद गुरुकुल है। श्री बलदेव सिंह, पद्मश्री 2026, कोटि कोटि नमस्कार।
5: तो कोटि-कोटि नमस्कार बलदेव सिंह जी को, जो कि हॉकी की एक पूरी पीढ़ी के लिए किसी शिल्पकार से कम नहीं, और उनके बनाए हुए तमाम खिलाड़ी आज जब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतते हैं, देश का मान बढ़ाते हैं, तो शायद बलदेव सिंह जी का सीना भी फक्र से चौड़ा होता होगा। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में आपसे इसी समय फिर मुलाकात होगी, खेल जगत की, खेल मैदान की तमाम खबरों के साथ। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन के ईमेल sportscan@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए

0: विस्तृत चर्चा की गई।
1: भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
2: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भुखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
3: अमेरिका एंड इंडिया,
4: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
3: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है।

0: और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: सुश्री शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
2: द मिनिस्ट्री ऑफ पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहेगी।

0: की संभावना है।
1: मौसम विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताहांत तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। ईशानी के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में एक विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लायन होजमार्क कजल्सफेल्ड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य पर संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit guarantees advantages for every segment of the society, asserts world is looking towards India as a trusted partner. Railway Minister Ashwini Vaishnav stresses on enhancing technology-driven security systems and improving operational security. Government reiterates that country has sufficient supplies of crude, petrol, diesel, natural gas and LPG. Centre issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola-affected countries. India-Africa Forum Summit postponed. IMD issues red alert for heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for tomorrow. And in IPL cricket, match between Gujarat Titans and Chennai Super Kings underway in Ahmedabad. Union Commerce and Industry Minister and BJP leader Piyush Goyal today said that the world is looking towards India as a trusted partner. Addressing a press conference in New Delhi on Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit, Mr. Goyal said that the visit guarantees advantages for every segment of the society. He said that the Prime Minister's visit reflects that India stands strongly on the global stage. He said 57 significant agreements were signed, including the commitment of UAE to invest $75 to $100 billion in India during the tour. He also hit out at Congress leader Rahul Gandhi for his alleged derogatory remarks against Prime Minister Narendra Modi. He said due to the negative politics of Mr. Gandhi, people are rejecting the Congress in elections. Later, in a different program, Mr. Goyal said that India and the United States are working as natural partners and complement each other across sectors including technology, innovation, high precision, defense, digital data centers, quantum computing and medical devices. Addressing the annual leadership summit of the American Chamber of Commerce in New Delhi, Mr. Goyal said the partnership between the two countries is strengthened by mutual trust and shared economic interest. The minister said that India provides a trusted framework for global companies and combines scale, talent and market opportunity.
3: America and India truly are working as